को महान पर्व बड़ा दशैं 2083 साल को पावन अवसर में देश तथा विदेश में छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरु लगायत सम्पूर्ण मीडिया प्रेमी मनहरुमा सुख शांति समृद्धि दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। कृष्ण तामाङ, बुबा सिंहमान तामाङ, आमा कालुमाया तामाङ, छोरी आर्य तामाङ, भान्जीहरू प्रशंसा राई, पद्मा राई, दिदी बेना शर्मिला तामाङ, अर्जुन मगर लगायत समस्त तामाङ परिवार पाँच

वार्ड प्रमुख बहादुर दाहाल, आमा गंगामाया दाहाल, भाई राजेन्द्र दाहाल, बुहारी सुशीला दाहाल, भतिजा प्रज्वल र युकेश दाहाल लगायत सम्पूर्ण दाहाल परिवार चैनपुर नगरपालिका 11 लोहाकोट संघ।

0: को महान चाड़बड़ा दशैं 2083 साल को पावन अवसर में कार्यक्रम निकोस टाइम प्रायोजक परिवार को तर्फवाट देश तथा विदेश में पनि रहने भएका संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत संपूर्ण मीडिया प्रेमी साथीहरूमा सुख शांति समृद्धि दीर्घायु एवं उच्च रोचक प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: निशान योहांग मांगसुबंग गांवपालिका तीन इलाम सुस्मिता नाचरी साउथ सिलिथ तीन चौकी डाणा भोजपुर हालत कुबेर विश्वजीत जिमी धर्मदेवी नगरपालिका दुई तामसोक संखुआ सभा हाल कतार जीवन खाबेन सभा पोखरी गांवपालिका चार संखुआ सभा हाल मलेसिया सपना शाकंखर माझी नगरपालिका चार देवढुंगा संखुआ सभा हिमाल सामलिंग राई सभा पोखरी गांवपालिका दुई जामिरे संखुआ सभा हाल मलेसिया शुक्रराज याखा कैंपुर नगरपालिका दस खरांग संखुआ सभा सानु सरगम राई बेलका नगरपालिका छ उदयपुर सुजन कुलुङ राई सुलिचुङ गाउँपालिका एक बेसिन्दा संखुआ सभा हालकतार दिल कुमारी रुम्बाङसा सभा पोखरी गाउँपालिका दुई ज्यामिरे संखुआ सभा अर्जुन याखा धर्मदेवी नगरपालिका दुई तामाफोक संखुआ सभा सम्झना रुम्बाङसा सभा पोखरी गाउँपालिका दुई ज्यामिरे संखुआ सभा शरद याखा धर्मदेवी नगरपालिका छ संखुआ सभा हाल काठमाडौँ देवराज राई चैनपुर नगरपालिका दस लेबारिङ संखुआ सभा हाल काठमाडौँ निरुषा खालिङ राई चैनपुर नगरपालिका नौ भित्रे संखुआ सभा मदन लिङ्खा धर्मदेवी नगरपालिका नौ मूलगाउँ संखुआ सभा हाल कतार मीडिया पे मिनिमु शेर्पा पाँच छोटा नगरपालिका आठ चुङखुरुङ संखुआ सभा भूपेन्द्र तामाङ सभा पोखरी गाउँपालिका तीन संखुआ सभा हाल युएई सुरज राई तुम्सा ओवादुमा गाउँपालिका पाँच भोजपुर हाल मलेसिया किशोर कोई राई केपिलासरी गाउँपालिका सुन्देन खोटाङ हाल काठमाडौँ सुजता जिमी धर्मदेवी नगरपालिका सात अमरुवा संखुआ सभा हाल हङकङ सिम्पल ललितबल भोजपुर नगरपालिका एक भामराङ भोजपुर हाल साउदी शर्मिला राई खाँदबारी नगरपालिका चार गैरीपाङमा संखुआ सभा हाल कुबेर अविरल घरती मगर चयन माथि गाउँपालिका पाँच भावाङ रोल्पा कल्पना चाम्पाङ भोजपुर हाल काठमाडौँ प्रणित याखा धर्मदेवी नगरपालिका दुई तामाफोक खोलापारी संखुआ सभा समीक्षा जोशी कुम्बेवा गाउँपालिका दुई मौवा पाँच छय प्रदीप राई चैनपुर नगरपालिका दस खराङ संखुआ सभा हाल युके सन्दीप याखा धर्मदेवी नगरपालिका दुई तामाफोक संखुआ सभा सुनिता याखा लिम्बुखिङ चैनपुर नगरपालिका दस खराङ संखुआ सभा र बागमतीको ज्वाई राई हेटौडा उपमहानगरपालिका सोह्र हाल काठमाडौँ एवं समस्त कार्यक्रम रिपोर्ट टाइम प्रायोजक परिवार।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो।

रे महिला बाले को आयो धनसन हतर हतर साइला बाले खासी बोका धनसन धनसन का आउनु भयो दिल मसाला बोकी छोरो आज धनसन बाले खाक खाक

पर्व बड़ा दशैं देखि 83 साल को पावन अवसर में देश तथा विदेश में छरिए रहनुभएका संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनी लगायत संपूर्ण मीडिया प्रेम मन में सुख शांति समृद्धि दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त कर बुबा सिंहमान तामाङ आमा कालुमाया तामाङ छोरी आर्या तामाङ भान्जीहरू प्रशंसा राई पद्मा राई दिदी बेना शर्मिला तामाङ अर्जुन मगर लगायत समस्त तामाङ परिवार पाँच

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 PM
3: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: अत्याधुनिक इन्डोस्कोपिक प्रविधिद्वारा अनुहारमा दाग नहुने

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाई सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 PM
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो।